0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: गुड न्यूज एफएम 105.1।
2: अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम धन्यवाद बिहानी।
3: यो समय हो धन्यवाद बिहानी।

0: कार्यक्रम विश्वासको वचन सुन्न नभुल्नुहोला। प्रत्येक आइतबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म र पुनः प्रसारण शनिबार साँझ 6 बजेदेखि 36 सम्म पास्टर अनिल सुनामको साथमा।
1: टाइम चेक। यति बेला बिहानको 8 बज्यो।

0: गुड न्युज एफएम 105.1।
1: अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ कार्यक्रम सफल यात्रा प्रस्तुता तेज रोकाको साथमा।